रेमन, तू मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में मन को लगा, वही तुझे इस भवसागर से पार करेंगे।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: जय
1: कंद भगवान की
0: जय।
1: श्री कौशल्यानंदन भगवान की
0: जय।
1: श्री दशरथ नंदन भगवान की
0: जय।
1: श्री कैकेयी नंदन भगवान की
0: जय।
1: श्री सुमित्रा नंदन भगवान की
0: जय।
1: श्री चारों भैयन की
0: जय।
1: श्री हनुमान जी महाराज की
0: जय।
1: श्री राम जन्मभूमि की
0: जय।

0: की
1: जय।
0: जगत गोस्वामी श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की
1: जय।
0: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की
1: जय।
0: समस्त पूर्वाचार्यों की
1: जय।
0: सर्व संत वैष्णव भगवान की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: गो माता की
1: जय।
0: भारत माता की
1: जय।

भर्जनम।

सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

गोविंद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग। श्री कृष्ण संन्यास एवं योग की समानता एवं फल तृष्णा के त्याग पर बल देते हैं। प्रभु कहते हैं कि वशीभूत मन ही मानव का परम मित्र होता है तथा वशहीन होने से मन ही परम शत्रु बन जाता है। श्री गोविंद कहते हैं कि सतत यत्न व योग अभ्यास से इस हठी व चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है।

अर्जुन का संशय दूर करते हुए ऋषिकेश कहते हैं कि साधन के अभाव में श्रद्धावान किंतु असिद्ध पुरुष एक उच्च सदाचारी परिवार में पुनः जन्म लेता है, जहां वह पूर्व जन्म के बुद्धि संयोग से सिद्धि प्राप्ति हेतु आगे प्रयत्न करता है।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांगी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध रखी। कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे, अपने साथियों के साथ देखा कि घंटी भी बंधी हुई। समझ गए गोपी बड़ी चालाक, तो घंटी को आदेश दिया कि तुम बोलना नहीं, चुप रहना, मेरे साथियों को माखन खाना। मटकी फोड़ी गई, सब साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, वो तो सबको खिला के खाते थे। जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली हमारे भगवान भोग लगा रहे हो, तुम कैसे चुप रह सकते हैं? हमारा तो काम ही यही है कि जब भगवान भोग लगाएं तो हम सारे संसार को बताएं कि अब प्रसाद ले लो, भगवान ने भोग लगा लिया। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया, ले गई यशोदा के पास। यशोदा अचानक पूछ बैठी कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया

दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ जरा सोचो माखन कैसे खा सकता, इतना छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहाँ टांग के रखते हैं। मैया मोरी।

इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया,

0: अब कन्हैया ने माँ की खुशामद, माँ की तारीफ शुरू की। ये माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी।
1: अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर।

विशेष बात हो गई। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे, माँ मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं है। ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे,

कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया और दोनों कह रहे माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखे शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है

हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन अर्चन भजन कीर्तन नाम सुमिरन उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

अपने देश भारत की प्रमुख नदी गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। युगों युगों से भारत के आध्यात्म और वैराग्य को सींचने वाली अनवरत अमृत धार है गंगा।

0: हमारी आस्था, हमारे जीवन, हमारी ऊर्जा और उल्लास की नदी है गंगा। पवित्रता और निर्मलता की जलधार है गंगा।
1: मानव के पंचकर्मों में एक है गंगा, शिव का रूप है, विष्णु का अंश है, ब्रह्म पोषित है गंगा।

0: गंगा वो नदी है जो मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं को भी प्रिय है। महाकाल, मृत्युंजय, महासत्य, महादेव शिव की प्रिय है गंगा। उनके पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को अस्तित्व प्रदान करने वाली गंगा ही है। तभी तो गणेश को गंगे भी कहते हैं।
1: गंगा के किनारे ही महात्मा बुद्ध को बोधि गति प्राप्त होती है। अपने पांच शिष्य मिलते हैं। रामायण की कथाओं में गंगा कभी प्रभु राम और केवट के मिलन की साक्षी बनती है, तो महाभारत में शांतनु की पत्नी और भीष्म पितामह की माता बनकर सामने आती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं नदियों में गंगा हूँ।
0: गंगा अवतरण से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं। शिव पुराण के अनुसार गंगा हिमालय की पुत्री और पार्वती की बड़ी बहन है। जब भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती के बलिदान के बाद मानसिक संताप से गुजर रहे थे, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने शिव का पुनर्विवाह गंगा से करा दिया। हर हर गंगे, गंगे,
1: हर हर गंगे, गंगे। मान्यता है कि गंगा ब्रह्मलोक से शिव की जटा में आई, परंतु शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। राजा भगीरथ के अनुरोध पर उन्होंने अपनी जटाएं निचोड़ कर छोड़ी, जिससे अनेक धाराएं निकली। इनमें तीन प्रमुख हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी। शिव ने अपनी जटा से एक धारा पृथ्वी पर उतारी, जिसे मंदाकिनी नदी मानते हैं। दूसरी धारा स्वर्ग चली गई, जिसका नाम अलकनंदा हुआ। यही धारा स्वर्ग से उतरकर बद्रिकाश्रम से प्रवाहित होती है। तीसरी धारा भगीरथ के रथ के पीछे चलकर देव प्रयाग आई और भागीरथी कहलाई।
0: भागीरथी नाम की इस जलधारा का संगम देव प्रयाग के पास अलकनंदा से होता है। फिर आगे बढ़ती ये सरिता तीर्थ रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी को समाहित करती है। यहीं से इस निर्मल जलधारा का नाम गंगा होता है।

हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की दशमी को पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ है। ये दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा में लगाई एक डुबकी पापों से मुक्ति दिला देती है।

0: कुरु।
1: हे माँ गंगा, हे यमुना, हे सरस्वती, हे नर्मदा और सिंधु कावेरी, सभी कृपा करो और प्रकट हो इस जल में, जिससे मैं अपनी शुद्धि कर सकूं।
2: गंगा अवतरण की कथा का आधार भागीरथ ऋषि द्वारा अपने पूर्वज रघुकुल राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाना है, जो कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए थे। सगर के पुत्र जहां ऋषि के शाप से भस्म हुए, वो पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा सागर नामक

0: स्थान है जहां गंगा सागर की गोद में समा जाती है। गंगा देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। गंगा नदी नहीं बल्कि एक संस्कृति है। पुराणों में पावन पतित पावनी पाप तारिणी गंगा को माँ का स्थान दिया गया है। गंगा हमारी भारतीय सभ्यता का रूप है।
1: उत्तर भारत में हिममंडित हिमालय के गोमुख नामक स्थान से निकलकर लगभग 2,500 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर गंगा सागर के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। गंगा
0: उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है गंगा और अपनी सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। सबसे पहले बात गंगा नदी बेसिन के महत्व की बता रहे हैं जल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. पांड्या।
2: गंगा बेसिन जो है हमारा वो देश का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, जिसमें कि हमारी सबसे ज्यादा जनता भी वहाँ रहती है और साथ ही साथ में ऑलमोस्ट हमारे कंट्री का करीब करीब 43% जितना एरिया को वो कवर करता है और उसका पानी जो है वो जो कि अल्टीमेटली हम उसको जिसको गंगा नदी के रूप में जानते हैं उसमें फरक्का तक जाके मिलता है और करीब करीब साल में एवरेज 525 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उसमें एवरेज जाता है। गंगा जो है वो हमारी एक जीवनदायिनी नदी है और उसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा आधार है हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए और हमारी पानी की सुरक्षा के लिए।
1: हिमालय की पहाड़ी ढालों से नीचे उतरकर पावन तीर्थ नगरी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है गंगा। हरिद्वार में गंगा घाट पर गंगा स्नान के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ लगी रहती है।
0: हरिद्वार के आगे उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में गंगा की धारा का स्वरूप बदलने लगता है। अपनी कई सहायक नदियों की जलराशि प्राप्त कर लेने से इसके जल प्रवाह में विशालता आती है।
1: गढ़ मुक्तेश्वर से दक्षिण पूर्व की दिशा में गतिमान होती गंगा की धारा संगम नगरी प्रयाग पहुंचती है, जहां गंगा यमुना और अंतःसलिला सरस्वती का संगम स्थल है त्रिवेणी।

0: त्रिवेणी से अपनी सहभागिनी यमुना की विशाल जलराशि अपने में समेटकर गंगा पूर्व की दिशा में बहती हुई भारत की गौरवमय संस्कृति की प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध काशी नगरी पहुंचती है। काशी, जिसका आधुनिक रूप में प्रचलित नाम बनारस या वाराणसी है, संसार के प्राचीनतम सजीव नगरों में से एक है और गंगा तट पर बने अनगिनत घाटों के लिए सारी दुनिया में मशहूर है।
1: माना जाता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, इसलिए इस शिवप्रिया नगरी में गंगा का भव्य स्वागत होता है।

0: गंगा के तटों की महिमा और गंगा की सांस्कृतिक विरासत पर डॉक्टर के आर शर्मा की बात याद आ गई। आप भी सुनिए।
1: हमारे हिंदू धर्म में जो भी कार्य है वो गंगा से जुड़ा हुआ, जो जीवन यापन है वो उसमें समय समय पर गंगा जल का योगदान होता है। अगर आप देखें तो बच्चे के पैदा होने के बाद जब उसका यज्ञोपवीत किया जाता है तब भी गंगा जल की उपयोगिता होती है। कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें गंगा जल की उपयोगिता होती है। सांकेतिक रूप में उसको हम लोग उपयोगिता में लाते हैं। आप देखेंगे कि जब मरने वाले होते हैं तब भी लोग गंगा जल अपने घर में रखते हैं ताकि उसके मरने से पहले उसके मुख में गंगा जल के कुछ बूंदे चली जाएं तो उसके जीवन पवित्र हो जाए। साथ में ये भी आप देखेंगे कि उसी गंगा के तट पर

0: लोगों की इच्छा होती है कि हमारे अंतिम संस्कार भी उसी गंगा के किनारे हो। तो जीवन के शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक गंगा की महत्ता हिंदू समाज में आप पाएंगे।
1: तीन लोक से न्यारी काशी, ये कहावत सदियों से प्रचलित है, जो काशी नगरी के न्यारेपन को उजागर करती है। गंगा के महत्व को बखान करती हुई पूर्व प्राध्यापिका डॉक्टर इंदिरा शर्मा कहती हैं,
2: गंगा के जल में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जिनके कारण हम इस नदी को एक पवित्र और अमृत तुल्य नदी मानते हैं। हम अपनी जो जर्नी है उसको अगर हम ऋषिकेश शुरू करते हैं तो वहीं से ये गंगा जो है एक तीर्थ के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आती है। यद्यपि जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ तो तीर्थ है ही, गोमुख तीर्थ है ही, लेकिन विशेष रूप से जहाँ तक जन साधारण इस तक पहुँचा है उसको हम ऋषिकेश से मानते हैं। जहाँ पर ये मैदानी भाग में आती है, यद्यपि इसकी जो धारा है बड़ी तीव्र गति से बहती है, लेकिन इसके किनारे मंदिर, आश्रम, ऋषियों के आश्रम रहे हैं जहाँ पर लोगों ने वेद ऋचाएं गाई हैं, अपने धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं, वहाँ से इसकी महत्ता जो है वो शुरू होती है। हमारे जीवन में ये इस कदर रच बस गई है कि हर भारतीय का ये सपना होता है कि जीवन में वो गंगा के किनारे जाए, उसमें स्नान करे और उसको ऐसा विश्वास है कि उसके जितने पाप हैं वो सारे धुल जाते हैं और उसकी आत्मा जो है पवित्र हो जाती है।
1: मंदिर, मस्जिद, पंडे, पुजारियों के इस शहर में विभिन्न संस्कृतियों के रूप देखने को मिलते हैं। एक ओर काशी विश्वनाथ और संकट मोचन का दिव्य स्थान है तो दूसरी ओर कबीर चौरा और संत तुलसीदास का तुलसी घाट। नृत्य विशारद बिरजू महाराज हो या शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, महान साहित्यकार भारतेंदु और महाकवि जयशंकर प्रसाद इसी नगरी के निधि रहे हैं। महामना मदन मोहन मालवीय की देन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यही गंगा तट पर स्थित है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां रोज सुबह अपनी शहनाई गंगा जल से धोते थे। उन्हें गंगा बहुत प्रिय थी। जब भी बनारस में होते थे तो गंगा को अपनी शहनाई सुनाना नहीं भूलते थे।
3: भारतीय साहित्य भी गंगा के स्तुतिगान से अछूता नहीं रहा है। कई रचनाएं गंगा को ही समर्पित की गई हैं। पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी उनमें से एक है।

0: जनित जगत खंड परशो।
1: तीर्थ नगरी काशी के मनोरम घाटों से आगे प्रवाहित होती हुई गंगा धारा मालवीय पुल से आगे मुगल सराय होती हुई बिहार प्रदेश में बक्सर पहुंचती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव के साथ जनकपुर स्वयंवर में जाने के लिए यहीं से गंगा को पार किया था, जो अब रामघाट के नाम से प्रसिद्ध है।

0: बक्सर से आगे चलकर गंगा पहुंचती है पटना, यानी बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र। मंद मंद गति से पूरब की ओर प्रवाहित होती गंगा की धारा पटना पहुंचने के पहले सरयू और सोण नदी की जलधाराओं को भी अपने में समेट लेती है।
1: दीपावली के 6 दिन बाद जब छठ पूजा मनाई जाती है तो यहाँ गंगा के घाटों पर आस्था और विश्वास की एक अद्भुत छटा देखने को मिलती है।
2: छठ की पूजा में गंगा के अंदर हम खड़े होकर पूजा करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो गंगा मैया से भी मांगा जाता है, केवल सूर्य से नहीं।
1: आप हैं प्रसिद्ध लेखिका और संपादक डॉक्टर मृदुला सिन्हा।
2: मांग होती है सब चीज की, और उसमें अन्न है, जल है, धन है, सब कुछ

मांगते हैं, लेकिन गंगा से भी मांगते हैं और सूर्य से भी मांगते हैं। वहाँ दोनों को समान आसन पर बैठा दिया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि गंगा को लोक जीवन से और संस्कृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और सही बात तो यह है कि गंगा हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ी प्रतीक है, जो इसकी अविरल धार है, और वो बहती रही है, बहती रहेगी।

0: गंगा परिवहन का जरिया रही है, अब भी है। गंगा के इस पक्ष के बारे में विस्तार से बताते हुए पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और लेखक श्री दुर्गादास गुप्ता।
1: नेशनल वाटरवे की तरह है, आज से नहीं हजारों साल से। छोटे नाव, बड़े नाव, सब पे चल करके लोग जाते आते थे, उनकी यात्राएं हुआ करती थी, लोग जाया करते थे, माल ढोया जाता था। उसका आज भी उदाहरण ये है कि छोटे छोटे इस ज़माने में भी बजरे पे सामान लेकर के लोग जाते हैं, लेकिन जगह जगह चूँकि इतना बॉटल नेक आ गया है नदी में कि अब वो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन इसी संदर्भ में मैं ये कहूँ कि अगर रेलवे के ऊपर, सड़क के ऊपर से अगर आपको भीड़ कम करनी है तो एक विकल्प के रूप में आपको देखना चाहिए कि जो लोग आराम से चलना चाहते हैं, आराम से देखना चाहते हैं भारत को या भारत के इस हिस्से को, तो उनको बजाय पैलेस ऑन व्हील्स के या राजधानी के, वो गंगा को इस तरह से विकसित करना चाहिए ये यात्रा करने का कि लोग उसको, उसका सुखद अनुभव ले सकें और लोग समझ सकें कि हमारी परिपाटी क्या है, हमारी परंपरा क्या रही है, गंगा का महत्व क्या है इस बारे में। क्योंकि जब तक हम इसको हरिद्वार से लेकर के और नीचे हुगली तक नहीं जाते हैं तो हम गंगा कितनी महान है, गंगा की क्या आवश्यकता है, गंगा कैसी थी, कैसी है, कैसी होनी चाहिए, ये हम उस दृष्टिकोण को नहीं विकसित कर पा रहे हैं। और जहाँ तक गंगा के सफाई की बात है, गंगा जब तक साफ नहीं होगी तो परिवहन उसके ऊपर नहीं हो पाएगा। और नई टेक्नोलॉजी से गंगा को साफ करना होगा, ड्रेजिंग होनी चाहिए, फ्लोरा फौना को बचाना चाहिए और उसके ऊपर परिवहन जो हो, पैसा जो खर्च हो, उससे कमाई हो, उसका एक अलग कोष बने और गंगा को और दूसरी नदियों को धीरे धीरे करके उस कोष से जोड़ देना चाहिए।
0: नदियों को जोड़ने और उन्हें परिवहन का एक माध्यम बनाने की प्रक्रिया पर सोच विचार किया जा रहा है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में गंगा के बारे में श्री दुर्गादास गुप्ता आगे कहते हैं,
1: हजारों हजार साल से ये वाटर हाईवे था और रही है, जिसका उपयोग होता रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि अगर गंगा को समझना है, गंगा के बारे में बात करनी है, गंगा की महत्ता समझनी है आध्यात्मिक दुनिया से बाहर निकल करके, तो सबसे पहले एकेडमिक वर्ल्ड को ध्यान देना पड़ेगा कि गंगा के ऊपर या नदियों के ऊपर स्कूल ऑफ स्टडीज़ बने। काफ़ी जियोलॉजिकल डेटा है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री बहुत है, लेकिन वो स्टडी, जो इन डेप्थ स्टडी, जो सघन अध्ययन होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है।

पटना शहर गंगा तट के दाएं किनारे पर दीघा घाट से लेकर पूर्व में फतुहा तक फैला है। इसे विशाल साम्राज्यों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त और महान गुरु चाणक्य की कर्म भूमि रहने का संयोग इसी पाटलिपुत्र को मिला। चंडाशोक से अशोक बना मगध का सम्राट यहीं गंगा तट से अहिंसा और करुणा का संदेश दे गया।

0: जीवन पा। सोनपुर और हाजीपुर के बीच गंगा में आकर मिलती है नेपाल में हिमालय से निकलकर आने वाली गंडक नदी। यही वो स्थान है जहां हर साल विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है।
1: तो हर महिमा आगमा अपार है गंगा मैया।
0: अनेक छोटी बड़ी नदियों की विशाल जलराशि लेकर गंगा अपने स्वरूप का विस्तार करती है और पहुंचती है सुल्तानगंज। यहाँ की विशेषता और गंगा के बारे में बताते हुए पूर्व राजदूत और सांसद डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस कहते हैं,
2: भागलपुर जिला में गंगा का महत्व सुल्तानगंज के गंगा से है। गंगा जब चलती है हरिद्वार से बंगाल की खाड़ी की ओर, तो दो जगह ही ऐसी जगह है जहाँ उत्तर वाहिनी गंगा है, एक तो बनारस में और एक सुल्तानगंज में। उत्तर वाहिनी गंगा का बहुत ज्यादा महत्व है। लोग वहाँ यदि स्नान कर लेते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें असीम शांति प्राप्त हो गई। अभी भी हर साल लाखों लोग सुल्तानगंज से पैदल देवघर जाते हैं और बाबा बैद्यनाथ के ऊपर सुल्तानगंज का पवित्र गंगा जल चढ़ाते हैं। सुल्तानगंज का पहले नाम गंगा धाम था। औरंगजेब ने इसका नाम बदल कर सुल्तानगंज कर दिया, जहां उसके फौजी छावनी डालते थे और वहीं से वो लोग बंगाल आसाम पर कूच करते थे। सुल्तानगंज में ही लोग कहते हैं अजगबीनाथ मंदिर में जहन्नू मुनि रहा करते थे, जिनके नाम पर गंगा का नाम वहां से जहन्नवी पड़ा। एक बार किंवदंती है कि जहन्नू मुनि ने गंगा को पी लिया क्योंकि गंगा बहुत किलोल करती थी। भागीरथ ने बहुत अनुनय विनय किया, तब जहन्नू मुनि ने गंगा को अपने जांग को चीर कर गंगा को निकाला। अभी भी सुल्तानगंज के बगल में एक गांव है जिसका नाम जहन्नू मुनि पर है और अपभ्रंश होते होते अंग्रेजों के टाइम में इसका नाम जहांगीरा पड़ गया। बहुत ही भव्य दृश्य है सुल्तानगंज के गंगा का, और देवघर की कल्पना नहीं कर सकते हैं यदि सुल्तानगंज की गंगा का जल वहां नहीं पहुंचे। सुल्तानगंज और देवघर का संबंध बहुत ही निकटतम है।
3: संस्कृति और विधा वैभव का केंद्र भागलपुर से आगे पूर्व की ओर स्थित है फरक्का बराज यानी गंगा नदी पर बना विशाल जल अवरोधक। एक समझौते के अनुसार गंगा जल का एक उचित हिस्सा बांग्लादेश की ओर प्रवाहित किया जाता है।
0: फरक्का से आगे गंगा की शेष धारा हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुँचती है। यहाँ इसके किनारे स्थित है माँ काली का प्राचीन और विशाल दक्षिणेश्वर मंदिर, जो रामकृष्ण परमहंस की साधना स्थली भी रहा है।
3: पर्वतराज हिमालय से निकलकर लगभग 2500 किलोमीटर का प्रवाह पथ तय करने के बाद गंगा की धारा पहुंचती है डायमंड हार्बर, जिसके आगे बंगाल की खाड़ी का लहराता सागर और सुंदरी वृक्ष वाले सुंदर वन के जंगल फैले हैं।
0: गंगा कई हिस्सों में बढ़ती हुई धरती लोक पर अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव गंगा सागर पहुँचती है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां माँ गंगा ने भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था।
3: इस स्थान का बहुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। मकर संक्रांति के दिन यहां लाखों लोग स्नान करने आते हैं। तभी तो कहा जाता है कि सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। भारत में अनादिकाल से ही गंगा जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी रही है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अस्मिता की प्रतीक रही है। उसकी अविरल और निर्मल सतत धारा के बिना भारतीय अस्तित्व और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती।

0: मानव कल्याण के लिए धरती पर उतरती है वो गंगा है, जो मानव को स्वर्ग तक ले जाती है वो गंगा है।
1: सदियों से भारत की धरती पर बहती हुई गंगा इस देश की पहचान बनी हुई है, पर अफसोस की बात यह है कि वही गंगा अब अपनी पहचान खोती जा रही है।

0: गंगा थक रही है, मर रही है।
1: गंगा बहती हो क्यों?
0: अपनी अज्ञानता, लालच और स्वार्थ से हमने इसे इस हद तक प्रदूषित कर दिया है कि आज मोक्षदायिनी गंगा अपने मोक्ष के लिए हमसे मदद मांग रही है।

¡Arriba!

पिचकारी उठाई राधा ने, गाना आगे आगे भागे राधा पीछे पीछे दौड़े, इसे लपट झपट में गोपियां भी संग होले, फिर मृदंग बजे तो फिर ढोल बजे, और झांझ बजे तो फिर रास रचे, फिर सो

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: श्रोताओ, शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि सती दाह से क्रुद्ध हुए भगवान शिव शंकर ने वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया, उन्हें दक्ष और दक्ष यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। भयंकर युद्ध के बाद वीरभद्र ने दक्ष को मार डाला, उसका सिर काटकर अग्नि में भस्म कर दिया। दक्ष वध के बाद सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति रुक गई। चिंतित ब्रह्मा और विष्णु देवाधिदेव शिव के पास गए, उनसे दक्ष को क्षमा कर फिर से जीवन दान देने की प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान शिव ने उनका अनुरोध मान लिया, स्वयं जाकर दक्ष को जीवित कर दिया। अब प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: शौनक जी, कुछ समय तक तो सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। जब असुरों ने देखा कि भगवान शिव अखंड ध्यान में मग्न हैं, तो उनका साहस बढ़ने लगा और वे धीरे धीरे अपना सर उठाने लगे। दिन प्रतिदिन उनके अत्याचार बढ़ते ही गए।
2: तो क्या अपनी प्रजा के बढ़ते कष्टों को देख परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कुछ नहीं किया?
1: किया क्या नहीं शौनक जी, उनके हाथों अनेक दुर्दम्य असुरों का वध हुआ, परंतु असुर श्रेष्ठ तारकासुर उनके वश में नहीं आ रहा था। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उसके गले तक पहुंचकर पुष्पमाला बन गया था। वो तीनों लोगों को जीतकर उनका स्वामी बन गया था।
2: आश्चर्य है महाज्ञानी सूत जी, तारकासुर इतना बलशाली कैसे बन गया?
1: तारकासुर ने एक समय में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे इच्छित वर दे दिया था।
3: नारायण नारायण, विधात आपके वरदान के कारण ही तो तारकासुर अजय बन गया है।
4: पुत्र नारद, हम भगवानों की तो प्रकृति ही है अपने भक्तों को सुखी बनाना। हम सब भक्तों को स्वच्छ मन से वरदान देते हैं उनके हित के लिए।
3: परंतु परमपिता, कभी कभी आपका कोई भक्त आपके वरदान को ही अपना अस्त्र बना लेता।

0: अपने हित के लिए दूसरों का अहित कर डालता है।
1: मुने नारद, हम हर एक जीव को उसके जन्म के समय मस्तिष्क देते हैं। उस मस्तिष्क में हम कोई विचार नहीं भरते। उसका कैसे उपयोग करना है, यह हर एक प्राणी का निजी अधिकार होता है।
2: हमने प्राणियों के लिए तीन गुण बनाए हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। अब ये प्राणी के मस्तिष्क पर निर्भर है कि वो कौन सा गुण अपनाता है। जो जैसा गुण अपनाएगा वैसा ही व्यवहार भी करेगा।
0: किंतु श्री हरि, सृष्टि का संचालन तो आपके हाथों में है।
1: है, अवश्य है, परंतु प्राणियों का मस्तिष्क हमारे अधीन नहीं है। यदि अधीन होता तो देवता, मानव और असुर में भेद क्यों होता। सभी सत्कर्म करते हुए सत्य के ही पथ पर चलते तो आज हमें तारकासुर के दुष्कर्मों से पीड़ित होकर उसके विनाश की बात न सोचनी पड़ती।
0: हे विधि, जब आपको ज्ञात ही था कि असुर उत्पाती हैं, तो प्रभु उनको पैदा ही क्यों किया।
1: मुने नारद, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए विविधता आवश्यक है। नहीं तो हर पेड़ पौधे का एक ही आकार होता, हर मानव मानवी, सुर असुर सभी का एक ही रूप होता। कल्पना करो, जीवन कितना नीरस होता।
0: परंतु असुरों द्वारा ये विध्वंस तो आप रोक सकते थे प्रभु।
2: महानिर्माण से पूर्व महाविध्वंस आवश्यक होता है। जितना ऊंचा और बड़ा भवन निर्माण करना हो उसकी नींव उतनी ही गहरी खोदी जाती है। समतल भूमि पर अट्टालिकाएं बना पाना संभव नहीं है। और पुत्र, जैसे निर्माण के लिए विध्वंस आवश्यक है, वैसे ही विध्वंस के लिए निर्माण आवश्यक है।
0: नारायण नारायण, प्रभु आप किस निर्माण की योजना बना रहे हैं।
2: शिव पुत्र की उत्पत्ति की योजना नारद।
0: शिव पुत्र? प्रभु आप ये असंभव।
2: तारकासुर और उसका वंश उन्हीं असुरों में से है जिन्हें मात्र शिव पुत्र ही मार सकता है।
0: किंतु देवी सती की मृत्यु के बाद ये कैसे संभव होगा।
2: पुत्र, सृष्टि के सुचारू संचालन के लिए असंभव को संभव बनाना ही होगा।
0: परंतु कैसे परमपिता?
2: सदा शिव का दूसरा ब्याह रचाकर।
1: परंतु विधे, भगवान शिव शंकर तो गहरी तपस्या में लीन हैं, तंद्रा भंग होने से क्रोधित भी हो सकते हैं।
2: हाँ भगवान, हो सकता है। और ऐसा ना भी हो तो भी प्रश्न ये उठता है कि लीलाधर भगवान शिव शंकर की पत्नी कौन होंगी।
1: महाप्रभु, महाप्रभु माता शिवा के अतिरिक्त किसी और को तो स्वीकार भी नहीं करेंगे। अब उन्हें ही पुनः अवतार लेना होगा।
2: परंतु इस बार किस रूप में लक्ष्मी पते,
1: यह विचारणीय है।
0: नारायण नारायण नारायण। प्रभु विष्णु, आपके श्वेत द्वीप में शीघ्र ही एक धार्मिक संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है।
1: हाँ नारद।
0: और परमपिता, आपके मानस पुत्र सनत कुमार इस संगोष्ठी में भाग लेने आ रहे हैं। उनके मुख से निकले शब्द ब्रह्मवाक्य माने जाते हैं प्रभु।
1: तो
0: प्रभु, दक्षराज ने अपनी पुत्री स्वथा का विवाह पितरों से किया था। उनकी तीन मानस पुत्रियां हैं, मेना, धन्या और कलावती। तीनों ही परम विदुषी हैं और धर्म की मूर्ति है प्रभु। प्रभु, यदि वे इस धर्म गोष्ठी में आ जाएं तो
1: तो क्या ऋषिवर नारद, आप क्या लीला रचने जा रहे हैं।
0: नारायण नारायण।
3: परंतु मुनि श्रेष्ठ नारद, संतों के समागम में स्त्रियों का क्या काम।
0: नारायण नारायण। ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये पितरों की मानस पुत्रियां हैं। ये अयोनिजा अवश्य हैं, परंतु लोक व्यवहार में ये स्वधा पुत्रियां ही मानी जाती हैं। ये तीनों ही परम योगिनी और ज्ञानी हैं।
3: अच्छा,
0: हाँ।
3: इनका धर्म ज्ञान तो अभी स्पष्ट हो जाएगा।

0: मेना, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। आपके उत्तर ही हमें संतुष्ट कर पाएंगे कि आप इस संत समागम में भाग लेने योग्य हैं या नहीं।
1: पूछिए सनत कुमार।
0: भक्ति के कितने अंग होते हैं देवी मैना?
1: भक्ति के 9 अंग होते हैं देव। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण।
0: उत्तम, अति उत्तम। इनके स्वरूप क्या होते हैं देवी?
1: सनत कुमार, सबसे पहले है श्रवण, अर्थात प्रभु लीलाओं की कथाएं सुनना, और फिर कीर्तन, अर्थात उच्च वाणी में प्रभु के गुणगान करना, भजन आदि करना, और तीसरा है स्मरण, अर्थात प्रभु को सर्वव्यापी मानकर सदैव निर्भय रहना।
0: और सेवन देवी?
1: हृदय और इंद्रियों से प्रभु की सेवा को सेवन कहते हैं। प्रभु को किनकर समझकर उसकी हर इच्छा को पूर्ण करना दास्य कहलाता है। इसी प्रकार धन वैभव के सामर्थ्य के अनुसार प्रभु को पाद्यादि 16 उपचारों को समर्पित करना अर्चन होता है।
0: परंतु देवी, अभी वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण शेष हैं।
1: जानती हूँ सनत कुमार, उनके बारे में भी बताती हूँ। मंत्रोच्चार करते हुए इष्ट देव को साष्टांग करना वंदन होता है। ये विश्वास रखना कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वो मंगल के लिए ही होता है, सख्य भक्ति का स्वरूप है। और देह समेत अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देना, अपने निर्वाह के लिए कुछ भी ना बचा के रखना आत्मसमर्पण कहलाता है।
0: आपने सिद्ध कर दिया देवी मैना, सिद्ध कर दिया कि एक शिक्षित स्त्री धर्माचरण जानती है, अतः वो पुरुषों के साथ संत समागम में हिस्सा ले सकती है।
2: नारायण नारायण नारायण।
1: क्षमा करें ऋषि सनत कुमार, केवल शिक्षित ही नहीं, अशिक्षित स्त्री भी धर्माचरण जानती है। पतिव्रत धर्म से बड़ा धर्माचरण भला और कौन सा हो सकता है?
0: हम समझे नहीं देवी मैना, व्याख्या कीजिए देवी।
1: मुनिवर, धर्माचरण के लिए आप मुनियों को बटना तो नहीं पड़ता, परंतु पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाली नारी को भिन्न भिन्न रूप लेने पड़ते हैं। कभी वो पति की प्रेयसी बनती है, तो कभी सेवा करने वाली दासी, कभी वो पति की वंश परंपरा चलाने के लिए जननी बनती है, तो कभी पति का अपमान करने वाले के लिए दुर्गा। इस पत्नी धर्म के अंतर्गत कितने ही अन्य धर्मों का निर्वाह करना पड़ता है। स्त्री अगर ये धर्माचरण छोड़ दे तो उसका परिवार टूट जाता है।
0: धन्य है आप, धन्य है देवी मैना।
2: नारायण नारायण नारायण।
0: मैं बहुत प्रसन्न हुआ देवी मैना, बहुत प्रसन्न हुआ। मैं आपको तथा आपकी दोनों बहनों धन्या तथा कलावती को आशीर्वाद देता हूँ।
3: ज्येष्ठा मैना, आप हिमगिरी राज हिमवान की पत्नी बनेंगी और आपकी पुत्री पार्वती के नाम से विख्यात होगी।
2: नारायण नारायण नारायण।
3: योगिनी धन्या, आप राजा जनक की पत्नी होंगी। आपके यहां स्वयं महालक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित होंगी। और कलावती, आप द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी बनेंगी। आपकी पुत्री राधा श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होंगी।
2: नारायण नारायण नारायण।
4: आइए हमारे वाम में विराजिए, महाप्रभु के आदेश से दुर्गा स्तुति आरंभ करते हैं।

0: माते, जगत जननी, आपके दर्शन मात्र से ही हृदय के सभी क्लेश धुल गए हैं।
1: हे शिवलोक निवासिनी, आपने हम भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है।
2: हे कल्याणकारी शिवा, आपके चरण का स्पर्श पाते ही ये समस्त हिम प्रदेश पवित्र हो गया है।
3: माते, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। प्रसन्न रहो हिमवान पत्नी मीना। ब्रह्मदेव, आप भविष्य वक्ता हैं। आप मुझसे किस भविष्य की अपेक्षा रखते हैं?
0: माते, आप सर्वज्ञा से कुछ भी कहना सूर्यदेव को दीप दिखाने जैसा होगा। फिर भी अंबे, हम सबका आपसे एक निवेदन है।
3: निसंकोच कहिए देवगण।
1: माता शिवा, सती रूप में आपके अवतरण से समस्त जगत प्रसन्न और निश्चिंत हो गया था, परंतु पिता द्वारा पति के तिरस्कार के कारण आपने देह त्याग कर दिया। इससे संपूर्ण सृष्टि शोक में डूब गई है माते। स्वयं महादेव विरक्त होकर तपस्या में लीन हो गए हैं माते।
0: अंबिके, आपके स्वधाम पधार जाने से देवताओं का मनोरथ अपूर्ण रह गया है। वे अपने ही लोक से निष्कासित कर दिए गए हैं। सब और असुर राज स्थापित हो गया है। तीनों लोकों के जीव व्याकुल हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है।
1: और माते, इस विपदा का एक ही निराकरण है, शिव पुत्र की उत्पत्ति।
0: और ये आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है जगदम्बे।
3: तो आप सबकी क्या इच्छा है? माते, माते, आप मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर तीनों लोकों के वासियों को असुरों से मुक्ति दिलाएं।
2: माते, आप पुत्री के रूप में मेरे यहां अवतरित हों।
1: शिव पत्नी बनकर संतान उत्पन्न करें माते, जो हमसे वरदान प्राप्त कर असुरों का नाश करे।
3: ऐसा ही होगा विष्णु हरि। परंतु मीना, आज्ञा महादेवी, इसके लिए तुम्हें आने वाले चैत्र मास से 27 वर्ष की तपस्या करनी होगी।
4: जो आज्ञा माते। परंतु माँ।
3: कहो मीना, मन में कुछ ना रखो।
4: माते, मुझे वर दीजिए, मुझे पुत्र प्राप्ति भी हो, जो असुरों का विनाश करने में सक्षम हो।
3: तथास्तु। मीना, तुम मेरे अवतरण से पूर्व 100 बलशाली पुत्रों को जन्म दोगी। उनमें सर्वोत्तम होगा मैनाक। उसके पश्चात मैं पुत्री के रूप में तुम्हारी गोद में आऊंगी। तुम उसका नाम पार्वती रखना। पार्वती अर्थात पर्वत की पुत्री।
0: आप धन्य हैं महादेवी, धन्य हैं।
2: आपने अपने भक्तों पर असीम कृपा की है माते।
1: हम आपके सदा से ही ऋणी रहे हैं माते।
2: आप धन्य हैं महादेवी, आप धन्य हैं।
5: महाज्ञानी शौनक जी।

0: ये वरदान देकर महादेवी शिवलोक लौट गईं। देवी मेना ने महादेवी की आज्ञा से 27 वर्ष का तप आरंभ किया। महादेवी के आशीर्वाद से मेना को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से सर्वश्रेष्ठ था मैनाक,
1: परंतु महाभाग 3 लोगों के प्राणी तो बड़ी आतुरता के साथ पार्वती जन्म की प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
0: हाँ शौनक जी, देवी शिवा के आशीर्वाद से हिमवान के घर एक अत्यंत रूपवती कन्या ने जन्म लिया। महादेवी के आदेश पर ही उसका नाम पार्वती रखा गया। चारों दिशाओं में आनंद का वातावरण छा गया। घर घर मंगल वाद्य बज उठे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे।
1: ये सब तो स्वाभाविक ही था, तारकासुर संहारक की जननी ने जो जन्म लिया था।
0: हिमवान पुत्री पार्वती वर्षा में गंगा की जलराशि की तरह बढ़ने लगी। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव भक्ति की प्रबल भावना थी। वो हिमवान के घर में प्रतिष्ठित शिवलिंग के सामने बैठ जाती और घंटों ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। एक दिन उनकी भक्ति से विभोर होकर नारद मुनि बालिका पार्वती के दर्शन को वहां पहुंचे।
2: नारायण नारायण नारायण।
3: महर्षि नारद, आपके आगमन से मैं धन्य हुआ। पुत्री पार्वती को आशीर्वाद दें।
2: नारायण नारायण। गिरिवर, हिमवान, स्वयं जगदम्बा को भला मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ? मुझे तो इनके दर्शनों की अभिलाषा यहाँ खींच लाई है।
4: महर्षि नारद, आप तो भविष्य वक्ता हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर इसका भविष्य बताइए।
2: देवी मैना, आपके घर में तो स्वयं शिवा ने जन्म लिया है, भविष्य का निर्माण करने वाली का भविष्य भला मैं क्या बताऊं? फिर भी पुत्री पार्वती, अपना हाथ तो दिखाओ। गिरिराज, आपकी पुत्री की हस्तरेखाएं तो शुभ लक्षण ही दिखा रही है। नारायण, ये माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी, ये परम साध्वी तथा स्वजनों को आनंद देने वाली बनेगी।
4: और पति मुनि श्रेष्ठ?
2: अपने पति को ये अत्यंत सुख पहुंचाएंगी। इसके पति सदा इनकी सेवा से प्रसन्न रहेंगे और इनका आदर सम्मान करते रहेंगे। परंतु ये क्या?
4: क्या हुआ मुनि नारद?
2: ये तो बड़ी ही विलक्षण रेखा है।
3: मुनिवर, शीघ्र बताइए क्या अशुभ होने वाला है?
2: नारायण नारायण नारायण, आपने अशुभ की बात कैसे सोच ली? गिरिराज, देवी का कोई अशुभ कर सकता है? बस इनके पति का रंग रूप स्वरूप कुछ।
4: बताइए महामुनि, बताइए, रुक क्यों गए?
2: तो सुनिए देवी मैना, इन्हें एक अर्धनग्न भभूतधारी निर्गुण निष्काम सन्यासी पति के रूप में मिलेगा।
4: ये कैसी भविष्यवाणी कर डाली आपने ऋषिवर? मेरी यह सुंदर पुत्री एक कुरूप योगी की पत्नी बनेगी।
2: यही सत्य है देवी मैना, इसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि ये विधि का विधान है।
3: परंतु महर्षि, परम पिता ब्रह्मा ने तो ये आशीर्वाद दिया था कि स्वयं देवाधिदेव शिव पार्वती के पति होंगे।
2: नारायण नारायण नारायण, आपको इस आशीर्वाद पर भी संशय नहीं होना चाहिए।
4: परंतु जिस रूप का आपने वर्णन किया है वो देवादिदेव का हो ही नहीं सकता, वो तो अत्यंत सुंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी है।
2: नारायण नारायण, आपका कथन भी सही है देवी मैना, परंतु समय और काल कभी कभी व्यक्ति को रूप बदलने को भी बाध्य कर देता है। नारायण, गिरिराज हिमवान,
3: महर्षि,
2: देवी मैना, आप निश्चिंत रहें, पार्वती को शिव ही प्राप्त होंगे। पार्वती जीवन पर्यंत उनकी सहभागिनी बनी रहेंगी। नारायण नारायण।
1: फिर महामुनि सूत जी, घटना चक्र किस प्रकार घूमा?
0: शौनक जी, उत्तम गुरुओं से शिक्षा दीक्षा पाती देवी पार्वती बड़ी होने लगी। यौवन अवस्था में पहुंचते पहुंचते पिता हिमवान को उनके विवाह की चिंता सताने लगी।

0: चिंता? कैसी चिंता सूत जी महाराज? पार्वती जी को वरदान प्राप्त था कि उनका विवाह शिव से होगा।
1: शौनक जी, पुत्री के विवाह की चिंता पिता के लिए स्वाभाविक ही होती है, और ये चिंता मात्र दरिद्र पिता को ही नहीं होती, सर्वसाधन संपन्न पिता भी इससे मुक्त नहीं होते।
2: सृष्टि रचयिता परमपिता ब्रह्मा को मेरा नमन है।
1: उत्तुंग भव पर्वतराज हिमवान, व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हैं? पुत्री पार्वती का महादेव से विवाह होना निश्चित है।
2: परंतु कैसे? महादेव ने सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग रखा है, उनका समग्र ध्यान इस समय परम ब्रह्म में है। इसी कारण वे देवताओं तक को दर्शन नहीं दे रहे। वे ध्यान छोड़कर विवाह की ओर कैसे उद्यत होंगे? और फिर
1: रुक क्यों गए गिरिवर? कहो, और फिर क्या?
2: प्रभु, किन्नरों के मुख से एक और बात भी सुनने में आई है।
1: वो क्या है वत्स हिमवान?
2: कहते हैं कि भगवान सदाशिव ने दक्ष पुत्री सती से एक प्रतिज्ञा की थी। प्रभु ने वचन दिया था कि वो उनके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का वरण नहीं करेंगे। देवी सती की मृत्यु के पश्चात सदाशिव अपनी ये प्रतिज्ञा कैसे तोड़ेंगे?
1: तुम बहुत भोले हो गिरिवर। तुम्हारी पुत्री पार्वती ही अपने पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी। सती भी शिवा का ही अवतार थी, और अब वही शिवा तुम्हारे घर आंगन में अवतरित हुई है। शिव और शिवा का साथ तो चिरंतन है पुत्र, इसलिए पार्वती ही शिव पत्नी होंगी, इसमें संशय की कोई बात नहीं।
2: आपके इन वचनों से मैं चिंता मुक्त हुआ भगवान। परंतु
1: हिमवान, अब परंतु कैसा?
2: भगवान शिव तो तपस्या में लीन।
1: तपस्या ही तपस्या की काट बनेगी
2: प्रभु।
1: महासाधी पार्वती तपस्या करके शिव जी का मन मोह लेंगी, अपनी तपस्या के प्रभाव से महेश्वर को संतुष्ट कर पार्वती भगवान शिव के आधे शरीर को अपने अधिकार में कर लेंगी
2: प्रभु।
1: इस प्रकार भगवान शंकर का अर्ध नारीश्वर स्वरूप प्रकट होगा। जाओ वत्स, पुत्री पार्वती से शिव आराधना करने को कहो।
2: छो आज्ञा प्रभु, छो आज्ञा।
3: और शौनक जी, पिता की आज्ञा से देवी पार्वती शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी।
0: विप्रवर सूत जी, उनकी तपस्या क्या रंग लाई?
3: महाज्ञानी शौनक जी, पार्वती की तपस्या कोई सीधी सादी तपस्या नहीं थी जो शीघ्र ही सार्थक हो जाती। उनका लक्ष्य था महादेव को पति के रूप में पाना। ये लक्ष्य भले ही असाध्य ना हो, परंतु कठिन अवश्य था।
0: आप उचित कहते हैं सूत जी, भोले भंडारी को प्रसन्न करना हर एक के वश की बात नहीं।
3: शौनक जी, लक्ष्य जितना बड़ा होता है उसे पाने के लिए उतना ही कठिन परिश्रम करना होता है। परिश्रम के बिना तो कुछ भी संभव नहीं।
0: तो देवी पार्वती का यह परिश्रम कैसे सार्थक हुआ?
3: शौनक जी, इस विषय को हम अभी यहीं विश्राम करने देते हैं, आगे की कथा कुछ समय उपरांत।
4: शिव महिमा का आज का प्रकरण हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता तृतीय खंड के पहले अध्याय से आठवें अध्याय तक से लिया था।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत,

0: और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

दर या 6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, डीआरएम 864 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 4:30 बज रहे ने। आओ हुण तुहानू लै चलदे आं श्री दरबार साहिब अमृतसर, जित्थों तुसी शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस और प्रभु राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित इस विशेष नाटक की पांचवी कड़ी।

0: जनसमूह को साथ ले अपने भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी तीसरे दिन श्रृंगवेरपुर के पास जा पहुंचे।
1: भरत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कहीं उनके मन में कुछ कपट तो नहीं है? अवश्य है, न होता तो सेना क्यों लाते? शायद वे समझते हैं कि राम वन में अकेले हैं, उनको मारकर निष्कंटक राज्य क्यों ना भोगा जाए। आखिर कैकेयी के बेटे हैं ना, लेकिन वे ये नहीं जानते कि सारे देवता और दानव मिलकर भी यदि आए तो राम को नहीं जीत सकते। सैनिकों सावधान हो जाओ, हत बांसव बोरहुतरन, कीजिए घाटारोह। देखता हूं मेरे रहते गंगा कैसे पार करती हैं। ऐसी मृत्यु कब कब मिलती है, और राम के लिए मरने में तो दोनों हाथ लड्डू हैं, यश भी और मुक्ति भी। लाओ मेरा तूड़ी धनुष और कवच उठा लाओ, देर मत करो।
2: जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। राम के प्रताप और आपके बल से हम भरत की सेना के एक एक योद्धा को चुन चुन कर मार डालेंगे। जीते जी पीछे हटने वाले नहीं, सारी धरती को रुंड मुंड से पाट देंगे।
1: युद्ध के बाजे बजने दो।
2: बहुत ही अच्छा शगुन है, रण में अवश्य सफलता मिलेगी।
3: ठहरो, राम ही भरत मनावन जाहीं, सगुन कहीं अस

0: विक्रह नाही। शगुन कहता है कि भरत राम को मना कर लौटा लाने के लिए बन जा रहे हैं, तुम उनसे जाकर मिलो, युद्ध का अवसर नहीं आएगा।
1: शायद आप ठीक कहते हैं, नीति कहती है सहसा करे पछताए बिमुड़ा। भरत का शील स्वभाव जाने बिना लड़ाई की घोषणा करना अपनी ही हानि करना है, इसलिए तुम सब लोग घाट पर डटे रहो, मैं अकेला जाकर सब भेद ले आता हूं।
2: उन्हें इस प्रकार समझा बुझाकर और भेंट के लिए नाना प्रकार की सामग्री लेकर वे भरत से मिलने के लिए चले। दूर से ही अपना नाम बताकर दंडवत प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ के मुख से ये सुनकर कि राम के सखा निषाद राज उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, भरत झट रथ से कूद पड़े और उन्हें उठाकर छाती में भर लिया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई, मनहु लखन सन भेट भई, प्रेमुन हृदय समाई।
3: धन्य धन्य धन्य।
1: श्रृंगवीरपुर का निवासी निषाद आपके चरणों में प्रणाम करता है।
4: कहिए निषाद राज, सब प्रकार से मंगल तो है?
1: प्रभो, आपकी कृपा से मेरे और मेरे करोड़ों कुलों का मंगल ही मंगल है। मेरे जैसे कपटी कायर मूर्ख और सब प्रकार से गए बीते को जब से राम ने अपना लिया, तभी से मैं संसार का भूषण बन बैठा हूँ।
2: निषाद की ऐसी प्रीत देखकर और सब लोगों ने भी उन्हें गले से लगा लिया। सबको लेकर वे श्रृंगवेरपुर आए और गंगा के दर्शन कर गदगद हो उठे। करहिं प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, करि मज्जनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत बोल उठे,
4: माँ गंगे, आपका रेणु सब सुख देने वाला है, काम धेनु के समान है। मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि राम और जानकी के चरणों में मेरा सहज स्नेह बना रहे।
1: निषाद राज, चलो
4: चलकर मुझे वे सब स्थान दिखलाओ जहाँ राम लक्ष्मण और सीता ने शयन किया था, जिससे मेरे नेत्रों को शांति मिले और मन की जलन मिटे।
2: जब भरत जी ने उन स्थानों को देखा तो उनके अंतर से जो प्रीति उमड़ी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चरण रेख रज आंखिन लाई, बनैन कहत प्रीति अधिकाई। वो बार बार राम सीता और लक्ष्मण की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे।

0: कह कही अमंगल मूला, भय सि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं थिक थिक अघ उदति अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। मैं पापों का समुद्र हूँ, अभागा हूँ, मुझे धिक्कार है। मेरे ही कारण ये सारा बखेड़ा उठ खड़ा हुआ है। कुल कलंक कर सृजउ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता।
1: नाथ, आप व्यर्थ क्यों अपना जी छोटा कर रहे हैं? आप राम को प्यार करते हैं और राम

0: आपको प्यार करते हैं। विधि बाम की करनी कठिन जिही मातु कीनी भावरी, ते रात पुने पुने करहीं प्रभु सादर सराहना रावरी। मैं सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि राम किसी को भी उतना प्रिय नहीं समझते जितना आपको। विश्वास कीजिए, अंत में सब मंगल ही मंगल होगा।
1: निषाद के इस प्रकार बार बार धीरज धराने पर भरत विश्राम करने के लिए चले गए। सवेरे बहुत जल्दी उन्होंने गंगा नदी को पार किया और सीताराम सीताराम रटते हुए प्रयाग पहुंच गए। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए थे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी ने भाव विह्वल होकर त्रिवेणी की स्तुति की।
2: अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्बान। जनम जनम रति राम पद, यह पर दान न आन।
3: तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाद गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही।
1: इसके पश्चात भरत जी ने मुनिवर भरद्वाज के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया। मुनिवर ने भरत जी से कहा, मैं तो तुम्हें देखकर यही समझ रहा हूँ मानो राम का प्रेम ही तुम्हारा रूप धरे चला आया है। भरत जी ने अपनी व्यथा प्रकट की। भरद्वाज मुनि के समझाने पर वे कुछ शांत हुए और एक रात वहाँ बिताकर सवेरा होते ही मुनि को प्रणाम कर वे निषाद राज के हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ गए। जैसे साक्षात प्रेम ही दो शरीर धारण किए चला जा रहा हो। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागु। मार्ग में जो भी भरत को देख लेता ऐसा लगता मानो उसने परम पद पा लिया है। गांव गांव के स्त्री पुरुष अपना अपना काम छोड़कर उन्हें देखने के लिए दौड़े चले आते। प्रेम में मगन हो वे ऐसी अटपटी बातें करते कि मन उमड़ उमड़ पड़ता।
4: कौन आ रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे सचमुच राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं।
5: अच्छा, राम लखन सखी हो ही कि नाही? बै बप्पु बरन रूप सोई आली, सीलु सनेहु सरिस सम चाली।
6: बेशु न सो सखी सीय न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एही भेदा।
5: ना ना, तुझे क्या वो कहानी नहीं मालूम कि किस प्रकार राम को राज तिलक मिलने वाला था और किस प्रकार भरत की माता कैकेयी ने बिघ्न डाला? लेकिन सखी, भरत तो भरत ही हैं।
6: देखो तो, चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आज।
5: हाय, कैकेयी माँ की कोख से ऐसा योगी पुत्र कैसे हुआ?
6: इसमें रानी का क्या दोष? ये सब करतूत तो विधाता की ही है, पर हमारे लिए तो ये अच्छा ही हुआ। हम ओछे कुलों वाली, मलिन कर्म करने वाली, बुरे गांव में रहने वाली, हमें इनके दर्शन मिले।
5: सच सखी, हमने कोई बड़े ही पुण्य कर रखे थे जिस कारण आज हमें इनके दर्शन हुए।
1: भरत के दर्शन पाकर रास्ते के लोगों के भाग्य खुल गए। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते थे अच्छे अच्छे शकुन होते जाते थे। उन्हें विश्वास हो चला था कि राम अवश्य मिलेंगे। प्रेम की मदिरा में सब ऐसे मस्त थे कि मुख से ठीक ठीक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, बिह्वल बचन प्रेम बस बोलही। उसी समय निषाद राज ने कहा,
0: नाथ वो देखिए, वो है चित्रकूट पर्वत।

0: उसके समीप ही मंदाकिनी के तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई कुटी बनाकर निवास करते हैं।
1: वो है चित्रकूट पर्वत कामदगिरी, वहां रहते हैं मेरे राम। सीतापति राम की जय,
2: सीतापति राम की जय।
3: नाथ, मैंने स्वप्न में देखा है कि आपकी विरह की तपन से अपनी देह तपाए हुए भरत जी सारा समाज साथ लिए चले आ रहे हैं, और सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी।
4: लक्ष्मण, यह स्वप्न कुछ अच्छा नहीं है। जान पड़ता है कोई बहुत बुरा समाचार आने वाला है। देखो तो आकाश धूल से भर गया है, पशु पक्षी घबराए हुए आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। बात क्या है
5: नाथ? भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ इधर ही आ रहे हैं।
4: भरत आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं?
5: नाथ, उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी है।
4: सेना है तो कहीं भरत मुझे लौटा लेने के लिए तो नहीं आ रहे हैं? एक ओर पिता का वचन, दूसरी ओर भरत का प्रेम। लेकिन नहीं, भरत तो सज्जन है, ज्ञानी है, वे मेरी बात निश्चय ही मान लेंगे।
6: स्वामी, क्षमा कीजिए, मैं बिना पूछे ही बोलने लगा हूं। आपका सेवक जो ठहरा, दृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा।
4: नहीं नहीं लक्ष्मण, कहो क्या कहते हो?
6: आप बड़े सहृदय और सरल चित्त वाले हैं, सबको अपने समान समझकर प्रेम करते हैं। लेकिन स्वामी, विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूड मोह बस हो ही जनाई। मैं मानता हूं कि भरत नीतिवान है, सज्जन है, ज्ञानी है, और आपके चरणों में उनकी प्रीति भी है। लेकिन तेऊ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई।
4: लक्ष्मण,
6: वे समझते हैं राम वन में अकेले हैं, इसलिए सेना लेकर आ रहे हैं।
4: लक्ष्मण, लेकिन।
6: लेकिन क्या? अगर उनके मन में कपट ना होता तो सेना क्यों लाते? भरत ही दोसु देह को जाई, जग बौराई राजु पद पाई। नाथ, मेरे कहने का बुरा ना मानिएगा, उन्हीं के कारण हमें ये दिन देखना पड़ा है। अब और नहीं सहा जा सकता। मैं क्षत्रिय हूं, रघुकुल में मेरा जन्म हुआ है, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं क्षण भर में भरत को सिखा दूंगा कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। राम निरादर कर फल पाई, सो वहु समर सेज दो भाई। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, जो सहाय कर संकर आई, तव मारूं रन राम दुहाई।
3: तात, तुम्हारा प्रताप सभी जानते हैं, किंतु सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए।
4: लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। संसार में यदि सबसे बुरा कोई मद है तो वह राजमद है। लेकिन जहां तक भरत का प्रश्न है, उनके समान श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हुआ। सुनो, भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अंधकार भले ही सूरज को निकल जाए, आकाश भले ही बादल में खो जाए, पृथ्वी भले ही अपना स्वभाव छोड़ दे, मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमत कभी नहीं सता सकता। लखन, तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना।

0: जिस समय श्री राम जी लक्ष्मण जी को इस प्रकार समझा रहे थे, उसी समय भरत जी निषाद राज के साथ श्री राम की ओर आ रहे थे। उनका मन शंकाओं से भरा हुआ था। सोच रहे थे कि कहीं मेरे आने का समाचार पाकर राम चले न जाएं। तभी निषाद राज ने टीले पर चढ़कर बरगद का वो पेड़ दिखाया जिसके समीप राम की कुटिया थी। फिर तो जहां भी भरत जी राम के चरण चिन्ह देख लेते, उसकी धूल उठाकर सिर माथे पर लगाते। उस समय वे इतने प्रेम विभोर हो उठते कि उनकी दशा देखकर जीव ही नहीं जड़ भी प्रेम में डूब जाते। धन्य है भरत, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। उसी समय उन्होंने राम को देखा। लसत मंज मुनि मंडली मध्य सीय रघुनंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। उनका मन प्रेम से मगन हो उठा। हर्ष शोक सुख दुख सब भूलकर वे पुकारते हुए धरती पर गिर पड़े।
1: हे नाथ रक्षा करो, हे स्वामी रक्षा करो, रक्षा कर, रक्षा कर।
2: भगवान, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं।
0: उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। इस मिलन के प्रेम का वर्णन कैसे किया जा सकता है? कोई भी कवि मन वचन और कर्म से इसका वर्णन नहीं कर सकता। दोनों भाई सुध-बुध फूलकर परम प्रेम में उमगे जा रहे थे। सीता जी तो इतनी विफल हो उठी थी कि बोल ही नहीं सकी। वास्तव में उस समय न तो किसी ने कुछ कहा ही, न किसी ने कुछ पूछा ही, क्योंकि सबका मन इतना प्रेममय था कि कुछ सूझ नहीं रहा था। किसी तरह साहस करके निषाद राज ने कहा,
3: हे नाथ, मुनिराज वशिष्ठ के साथ सब माताएं, अयोध्या के नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर आपसे मिलने यहाँ आए हैं।
0: सुनते ही राम उधर चल पड़े। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया, फिर अपनी माताओं को देखा जैसे सुंदर लताओं को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी कई के, सरल सुभाए भगति मति भेई, पग परिकीन प्रबोध बहुरी, काल करम विधि सिर धरि थोरी। इस प्रकार सभी को सांत्वना देकर और सबसे स्नेह से भेंट करके वे आश्रम की ओर लौटे। वहां फिर मिलन समारोह शुरू हो गया। सीता ने अपनी सासुओं को देखा तो एकाएक सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो राज हंसिनिया बधिक के हाथ में पड़ गई हूं। और जब मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनाया तो सबके करुण क्रंदन से वो वन प्रांतर कातर हो उठा। लगा जैसे महाराज का स्वर्गवास उसी दिन हुआ हो। मुनि वशिष्ठ के समझाने पर सब लोगों ने स्नान किया और दो दिन का व्रत रखा। उसके बाद दो दिन और वे उस वन प्रांतर में घूमते रहे। वनवासी कोल किरात और भील उनका नाना प्रकार से स्वागत करते। उनका प्रेम देखकर अयोध्यावासी लज्जित हो उठते। सोचते, राम से इनको इतना प्रेम है, उसके सामने हमारा प्रेम तो कुछ भी नहीं है।

0: लेकिन सबके मन शंकाओं से भरे हुए थे। राम लौटेंगे भी कि नहीं? तभी गुरु वशिष्ठ ने भरत को बुला भेजा, कहा, सबको सुख देने वाला तो एक ही काम है कि राम का राज तिलक हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि राम अयोध्या वापस कैसे जाएंगे?
1: हे मुनिश्रेष्ठ, आप ही कुछ उपाय सुझाइए।
0: इसका एक ही मार्ग है और वो ये है कि तुम दोनों भाई वन में रहो और लक्ष्मण सीता सहित राम लौट जाए।
1: मैं तो जन्म भर वन में वास करने को तैयार हूं, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। हे गुरुदेव, राम और जानकी तो सबके हृदय की बात जानते हैं और आप भी सर्वज्ञ हैं, इसलिए आपने जो निश्चय किया है उसे पूरा कर डालिए।
0: भरत के ये वचन सुनकर और उनका ऐसा स्नेह देखकर मुनि वशिष्ठ सहित सभी लोग गदगद हो उठे। भरत की विराट महिमा का पार कौन पा सकता है? भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। इसलिए वे उनको लेकर राम के पास पहुंचे, बोले,
2: भद्र राम, तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालो जिससे सबको संतोष हो। हम लोग बहुत दुखी हैं, अपना हित अनहित कुछ नहीं सोच पा रहे हैं।
3: गुरुदेव, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उपाय तो सब आपके हाथों है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पालन करूंगा।
2: राम, तुमने बात तो ठीक कही, पर भरत के स्नेह का विचार नहीं किया। मेरी बुद्धि तो भरत के हाथ बिक चुकी है। मैं शिव की दुहाई देकर कहता हूं कि तुम भरत की इच्छा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करोगे उसी से सबका कल्याण होगा। इसलिए पहले भरत की प्रार्थना सुन लो।
3: गुरुदेव, मुझे आपकी सौगंध है, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भय उन भुवन भरत सम भाई। जिस भरत पर आपका इतना स्नेह है उसके सौभाग्य का वर्णन भला कौन कर सकता है? वे मेरे छोटे भाई हैं, उनके मुंह पर उनकी बड़ाई करने में मुझे संकोच हो रहा है। जो कुछ भी वे कहेंगे वैसा ही करने में मैं भलाई समझता हूं।
2: तब हे भरत, तुम संकोच त्याग कर अपने मन की बात कह डालो।
1: मैं क्या कहूं, मुझसे बड़ा पापात्मा इस संसार में कोई नहीं।
3: देखो भाई, जहां तक मेरी बात है मैं तो तुम्हें भली भांति जानता हूं, पर मैं करूं तो क्या करूं? जिन महाराज ने मेरे प्रेम और सत्य की रक्षा के लिए प्राण तक त्याग दिए उनकी बात कैसे टालूं? उधर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी बात का ध्यान रखूं। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं?
1: हे स्वामी, आप वही कहिए जिससे आपके चित्त में किसी प्रकार की उलझन पैदा ना हो, क्योंकि जो सेवक अपने स्वामी को उलझन में डालकर अपना भला करना चाहता है उसके समान नीच कोई नहीं हो सकता। यदि आप लौट चलते तो सबका हित होता, पर आपकी आज्ञा पालन करना उससे भी कई करोड़ गुना अच्छा है। स्वारथु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का, यह स्वारथ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। मैं राज तिलक की सामग्री ले आया हूं, आप उसे स्वीकार करके सफल कर दीजिए। मुझे छोटे

0: भाई के साथ वन में छोड़ दीजिए और आप राज्य संभालिए। यदि आप वन ही में रहना चाहते हैं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। या फिर हम तीनों भाई वन में रह जाते हैं, आप सीता जी सहित लौट जाइए। इनमें से जो भी प्रस्ताव ठीक लगे स्वीकार कीजिए, मुझ पर निर्णय मत छोड़िए। कहूं वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत केचित चेतु।
1: कुछ निश्चय हो पाता कि समाचार मिला राजा जनक आ पहुंचे हैं। एक बार फिर उस मिलन समारोह में करुण रस की सरिता प्रवाहित हो चली। सीता की माता राम की माताओं से मिलने आई। वो मिलन भी कैसा अपूर्व था। माता कौशल्या बार बार जनक पत्नी से यही कहती थी कि राजा जनक लक्ष्मण को लौटा ले चलें और भरत को वन में रहने दें। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। लेकिन भरत और राम के प्रेम को तर्क से नहीं समझा जा सकता। सब यही चाहते थे कि राम राजा हों और भरत युवराज। सभी निरंतर इसी प्रश्न को लेकर विचार विनिमय कर रहे थे। सभा फिर जुड़ी। मुनि वशिष्ठ ने भरत के उच्च विचारों का परिचय देते हुए कहा,
2: राम, मैं तो यही कहता हूं कि तुम जो आज्ञा दोगे वही सब लोग मान लेंगे।
3: हे नाथ, जहां आपके साथ मिथिलेश जैसे महापुरुष विद्यमान हो वहां मेरा कुछ भी कहना धृष्टता होगी। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि आप तथा मिथिलेश जो भी आज्ञा देंगे वही मैं शिरोधार्य करूंगा।
0: आप लोग मेरा यह अत्यंत अनुचित व्यवहार क्षमा कर दीजिए। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहूं बदन मृदु बचन कठोरा। हे राम, आप मेरे माता पिता गुरु स्वामी और मित्र सभी कुछ हैं, परम हितकारी और अंतर्यामी भी हैं। अपने अज्ञान के कारण आपके और पिताजी के वचन टालकर ये सारा समाज लेकर यहां चला आया हूं। ये बड़ी ढिठाई में कर रहा हूं। आप मुझे यही समझकर क्षमा कर दीजिए कि मेरा जी बहुत दुखी है। अब आप आज्ञा दें और वही करें जिसमें मेरा कल्याण हो। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा।
3: भाई भरत, तुम धर्म धुरीण हो, तुम्हारा प्रेम अनुपम है। मन वचन कर्म से तुमने कभी कोई दोष नहीं किया। तुम सूर्य वंश के नियम को, सत्य का पालन करने वाले पिता को, समय को, समाज की दशा को, गुरुजनों की मर्यादा को, मित्र और शत्रु सबके मन को समझते हो। किसका क्या कर्तव्य है यह भी तुम जानते हो, और यह भी जानते हो कि कर्तव्य का पालन करने में ही तुम्हारा और मेरा हित है। इसीलिए भाई, तुम वही काम करो और मुझसे भी वही कराओ जिससे सूर्य कुल की मर्यादा की रक्षा हो।
0: किंतु आप मुझे संकट में
3: असह्य संकट सहने पर भी तुम प्रजा और परिवार को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करो। तुम्हें कोमल जानकर भी मैं ऐसा कठोर आदेश दे रहा हूं, लेकिन विपत्ति में अच्छे भाई उसी प्रकार सहायता करते हैं जैसे बाण का आघात होने पर स्वयं अपना हाथ आड़े आकर उसे रोक लेता है।
0: हे नाथ, आपके वचन सुनकर मुझे वही सुख प्राप्त हो गया जो आपके साथ वन जाने में मिलता। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पार पावो जैसे। मेरे मन में एक और भी लालसा है, पर संकोच के कारण कह नहीं पाता।
3: कहो कहो, संकोच की क्या बात है?
0: यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के मुनियों के आश्रम, तीर्थ, वन प्रांतर, विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित ये धरती घूमकर देखाऊं।
3: भाई, यहां मेरी नहीं अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर

0: निर्भय होकर वन में विचरण कर सकते हो। उन्हीं के प्रसाद से इस जंगल में मंगल छाया हुआ है।
1: राम और भरत की यह वार्ता सुनकर सब लोगों को हर्ष भी हुआ और विषाद भी। विषाद इसलिए कि राम को अब वन में ही रहना पड़ेगा। माता कौशल्या ने समझ लिया कि संसार में जितना सुख है उतना ही दुख भी है।

0: लेकिन भरत उनके मन का भाव ताड़ गए। धीर गंभीर स्वर में वे बोले,
1: हे नाथ, आपने मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी कर दी। मेरे कारण सब लोगों को और आपको भी बहुत कष्ट हुआ। अब मुझे वो आधार तो दीजिए जिसके आदेश पर मैं 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करता रहूं। इस अवधि में मुझे क्या करना होगा ये भी समझाइए।
2: धन्य हो,
3: धन्य धन्य हो,
2: धन्य हो, धन्य
4: हो। भाई, जब तक गुरु वशिष्ठ और राजा जनक जीवित हैं, हमें और तुम्हें स्वप्न में भी किसी बात का कष्ट नहीं हो सकता। हमारा कल्याण इसी बात में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, उससे यदि भूल में कोई बुरा काम भी हो जाए तो वो बुरा नहीं समझा जाता। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पालें, चले हूं कुमग पग पर ही न खालें। ऐसा विचार कर, सब सोच छोड़कर अयोध्या जाओ और प्रजा का पालन करो।
1: लेकिन मेरा आधार?
4: तुम्हारा आधार तुम स्वयं हो।
1: नहीं,
4: तब
1: आपकी चरण पादुकाएं, मैं उन्हीं से आदेश लेकर प्रजा का पालन कर पाऊंगा।
4: जैसी तुम्हारी इच्छा।
5: श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय।

ऐसा श्रेष्ठ अवलंब पाकर भरत फूले नहीं समाए। उन्हें अब ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सीता और राम के साथ रहने में होता। लेकिन अभी तो विदा का वो पावन और विषाद से भरा दृश्य शेष था। सब एक दूसरे से भेंट करते नहीं अघाते थे। तन मन वचन सब कहीं प्रेम ही प्रेम उमड़ा पड़ रहा था। मेरी काव्यवाणी उस दृश्य का वर्णन नहीं कर पाएगी। उसका स्मरण करते ही वो लज्जा से सकुचा गई है। विशेषकर सीता जिस समय अपने परिजनों से मिलकर लौटी और अपनी सासुओं से भेंट की, उस प्रीति का वर्णन करने के लिए तो कवि के हृदय में तनिक भी शक्ति नहीं रही है। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। लेकिन इस पर्व का भी अंत आना था। सबको विदा करके राम लक्ष्मण और सीता परिजनों के वियोग में बहुत देर तक दुखी मन बैठे रहे और भरत के प्रेम तथा स्वभाव का बखान करते रहे।

0: भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत सबानी। उधर भरत, जनक और वशिष्ठ राम के विरह में बड़े अनमने से उनका गुणगान करते हुए चौथे दिन अयोध्या पहुंच गए। राजा जनक ने 4 दिन वहां ठहरकर सब प्रबंध किए, फिर वे जनकपुर लौट गए। धर्मात्मा भरत ने शत्रुघ्न को माताओं की सेवा का भार सौंपा और गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया।
1: गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं इस अवधि में विशेष नियम का पालन करना चाहता हूं।
2: समुझब करब कहब तुम जोई, धर्म सारु जग होई है सोई।
0: गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी ने शुभ मुहूर्त में राम के चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं अयोध्या के दक्षिण में स्थित नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। उन्होंने राज सुख छोड़ दिया और तापस वेश धारण कर लिया। अबध राज स्वर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन धुल जाई। तेहि पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरी की जिमि चंपक बागा।

काग रूपधारी भयभीत जयंत सब कहीं मारा मारा फिरा। ब्रह्मलोक शिवलोक समस्त लोकों में पुकारता हुआ अंत में नारद जी द्वारा प्रेरित वो श्री राम की शरण में ही आया। आतुर और भयभीत जयंत ने श्री राम से अपनी रक्षा की प्रार्थना की, भांति भांति से अपने किए पापों के लिए क्षमा मांगी। श्री राम जी ने उसे अपनी शरण आया जान, एक नयन करी तजा। इस प्रकार चित्रकूट में रहते हुए श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए। वहां से विदा होते समय वे अत्र ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने श्री राम की अनेक प्रकार स्तुति की।

सीता जी ने विनम्र भाव से अत्र ऋषि की पत्नी अनसुया की चरण वंदना की। अनसुया जी ने उन्हें शुभाशीष देकर पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया।

विश्राम पाकर ऋषि के चरण कमलों में शीश नवा श्री राम जी वन को चले। उनकी छवि का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं। आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनिवर बेख बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहै कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। मार्ग में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। फिर शरभंग मुनि का उद्धार कर श्री राम आगे बढ़े। श्रेष्ठ मुनियों के समूह उनके साथ हो लिए। श्री राम ने आगे चलकर एक विशाल अस्थि समूह देखा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि राक्षसों ने सभी ऋषि मुनियों को मारकर खा लिया है। ये उन्हीं की हड्डियों का ढेर लगा है। इससे श्री राम जी के नेत्रों में आंसू छलक आए। ऋषि मुनियों को भयभीत जानकर उन्होंने निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई पन कीन सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। इसके पश्चात आगे चलकर श्री राम जी ने सुतीक्ष्ण की अविचल और निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। मुनि सुतीक्ष्ण

सुतीक्ष्ण की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री राम जी ने उन्हें अपनी अविचल भक्ति प्रदान की। फिर वे श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आए। दोनों भाइयों ने आदर पूर्वक अगस्त्य जी को प्रणाम किया। उनसे आशीर्वाद और निर्देश पाकर वे पंचवटी के निकट जा पहुंचे। वहां दंडकवन में गृध्रराज जटायु से उनकी भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर श्री राम जी गोदावरी नदी के निकट पर्णकुटी बनाकर रहने लगे।

0: लक्ष्मण जी की जिज्ञासा पर श्री राम ने उन्हें ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर, जीव आदि के संबंध में विस्तार से समझाया। भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख का अनुभव किया और प्रभु के चरणों में सिर नवाया। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तब एक दिन क्या हुआ,
1: सुंदर तनिक इधर तो देखिए।
2: कौन, क्या है?
1: देखिए तो तुम सम पुरुष न मौसम नारी।
2: क्या
1: हैरान न हो, ये संजोग विधि रचा बिचारी।
2: कैसा संजोग?
1: मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही।
2: तो
1: ताते अब लगी रहूं कुमारी।
2: कुमारी

0: मनुमाना कछु तुम्हें निहारी।
1: कुमारी उधर देखो, अहि कुमार मोर लघु भ्राता।
0: कुमार
2: सुंदरी सुनो, मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा।
0: लेकिन कुमार मैं तो आपको।
2: सुंदरी मैं तो एक छोटा सा सेवक मात्र हूँ, प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा, जो कछु करहीं उन्हीं सब छाजा।
0: किंतु तुम्हारे लिए भी तो सब कुछ संभव है कुमार।
2: नहीं सुंदरी, नीति कहती है सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जस चह चार गुमानी, नव दुह दूध चहत ए प्राणी। असंभव, बिल्कुल असंभव।
0: कुमार आप बड़े हैं, आप ही मुझे।
1: नहीं सुंदरी, मेरा छोटा भाई ही उपयुक्त है।
0: कुमार तुम ही मुझे अपनाओ, ऐसा भरपूर यौवन, मोहक सुंदरता, 16 श्रृंगार से सजी हुई ये देह तुम्हारे ही वरण करने योग्य है कुमार।
2: निर्लज्ज तो ही सो बरई, जो त्रिन तोरी लाज परिहरई, चल दूर हो यहां से।
0: देखती हूं, अभी देखती हूं।
1: लक्ष्मण क्या देखते हो?
2: ले ले पापिष्ठे, तेरे लिए यही दंड।
3: अपनी दुर्दशा का कुछ कारण तो बताओ।
0: कारण? कारण पूछते हो? जाकर राम और लक्ष्मण नाम के उन दो कुमारों से बदला लो।
3: तो क्या?
0: हाँ हाँ, उन्हीं कुमारों के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट लिए, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। हे भाई, जाओ और उन लोगों से मेरे अपमान का बदला लो।
4: योद्धा युद्ध का बिगुल बजाओ और उन दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लो।
1: लक्ष्मण यह कोलाहल सुन रहे? आकाश में उड़ती हुई इस धूल से लगता है कि असुर समूह अपना आतंक दिखाने को आतुर है। वो देखो, राक्षसों की भयानक सेना आ पहुंची। भाई लक्ष्मण, सीता को तुम पर्वत की गुफा में ले जाओ। सावधान रहना।

घनघोर संग्राम हुआ, खर और दूषण मारे गए। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर मायापति श्री राम ने ऐसा कौतुक किया कि शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। उधर तो राक्षस राम राम कहीं तनु तजहीं पावहीं पद निर्माण, और इधर करि उपाय रिपु मारे क्षण मऊ कृपा निधान। फिर शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर

0: लक्ष्मण जी सीता जी को गुफा से बाहर ले आए। यहां तो पंचवटी में श्री राम ने देवता और मुनियों को सुख दिया, वहां लंका जाकर शूर्पणखा ने रावण को भड़काया।
1: अरे लंकेश, तूने अपने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसी पान सोवसी दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आ राती। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सांप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे दशकंधर, तेरे जीते जी मेरी ये दशा।
2: अरे पहले ये तो बता कि तेरे नाक कान किसने काट लिए।
1: हाँ बैठे बैठे क्या पूछते हो, वहाँ वन में जाकर देखो। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए।
2: तो फिर क्या हुआ?
1: तुम नहीं समझोगे, मैं तो उनके कामों को देखकर समझ गई हूँ कि वे दोनों भाई पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे।
2: अरे तू उन बालकों से डर गई?
1: देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलवध रथ सुरमुनि सुखदाता।
2: तू उनका नाम तो बता।
1: शोभा धाम राम असनामा,
2: और
1: तिनके संग नारी इक श्यामा, रूप रास विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी।
2: तो क्या राम ने?
1: नहीं, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनितब भगिनी करी ही परिहासा।
2: क्या तेरी पुकार किसी ने नहीं सुनी?
1: मेरी पुकार खरदूषण ने सुनी, वे अपनी विशाल सेना लेकर मेरी सहायता को आए, लेकिन दोनों भाइयों ने सारी सेना को मार डाला।
2: और खरदूषण?
1: उन राजकुमारों ने खरदूषण और त्रिश्रा को भी मार डाला।
2: उन राजकुमारों का इतना साहस, क्या वे लंकाधिपति की शक्ति को नहीं जानती? शूर्पणखा, जा तू विश्राम कर, दोनों कुमार अपने किए का फल भोगेंगे।
3: सारी रात मुझे करवटें बदलते बीत गई, एक क्षण को भी नींद नहीं आई, पल भर को भी पलके नहीं लगी। आखिर यह सब कैसे हुआ? देवता, मनुष्य, नाग और पक्षियों में कहीं भी तो कोई ऐसा नहीं जो मेरे किसी सेवक की भी बराबरी कर सके। फिर खरदूषण कैसे मारे गए? वे भी तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है? तो क्या ये कुमार भगवान का ही अवतार हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाए बैर हठ करूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरूं। अब इस तामस देह से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन वचन और कर्म से मेरा यही दृढ़ मंत्र है। और अगर वे मनुष्य के रूप में किसी राजा के पुत्र होंगे तो उन दोनों को संग्राम में जीत कर उनकी स्त्री को छीन लूंगा।
0: रावण इस प्रकार का निश्चय कर अकेला ही रथ पर चढ़कर समुद्र तट पर रहने वाले मारीच के पास चला गया। इधर श्री राम ने एक अन्य ही युक्ति रच डाली। लक्ष्मण जी जब फल फूल कंद मूल लेने गए हुए थे तो श्री राम ने सीता जी से कहा, अब मैं कुछ मनोहर नर लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी श्री राम के आदेशानुसार प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गईं, किंतु सीता जी ने अपने ही जैसी शील स्वभाव और रूप वाली विनम्र छाया मूर्ति वहां छोड़ दी। लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। इधर तो ये लीला हो रही थी, उधर रावण की मंत्रणा और भय के कारण मारीच कपट मृग का रूप धारण कर पर्णकुटी के सामने होकर निकला। रावण भी वहीं उस वन में जा छिपा।

0: आर्यपुत्र वो देखिए, वो कितना सुंदर है वो मृग। सोने का शरीर और उस पर जड़ी हुई मणियां, कितना मनोहर है ये हरिण।
1: हाँ, है तो।
0: सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, ए मृग कर अति सुंदर छाला। हे सत्य प्रतिज्ञ, इसे मारकर इसका सुंदर चर मुझे ला दीजिए।
1: जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। लक्ष्मण।
2: देव, अरे आपने तो परिकर भी कस लिया, धनुष पर बाण का भी संधान कर लिया।
1: लक्ष्मण, सीता की इच्छा है कि मैं उस स्वर्ण मृग को मारकर उसका चर्म इन्हें ला दूं। मैं ऐसा ही करूंगा, किंतु भाई वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं, अतः तुम सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी।
2: जैसे प्रभु की आज्ञा।
0: लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भाई संकट में है, जाओ तुम शीघ्र ही उनकी सहायता को जाओ।
2: माता, भक्ति विलास सृष्टि लय हुई, सपने हो संकट परे की सोई।
0: ये बातें बनाने का समय नहीं है।
2: लगता है कठोर सत्य को आप समझ नहीं पा रही हैं।
0: और मुझे लगता है कि कायरता ने तुम्हारी बुद्धि और बल को हर लिया है। तुम जाते हो कि नहीं?
2: आपकी आज्ञा से मैं चला तो जाता हूँ, परंतु।
0: परंतु क्या?
2: कुछ नहीं, ये रेखा खींच रहा हूं, इसका उल्लंघन करने पर आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, स्मरण रखना।
3: नारायण नारायण नारायण।
1: देव,
0: यतिवर,
1: कथा कहानी सुनने में रुचि रखती हो?
0: आपकी कृपा है यतिवर।
1: राजनीति का उपदेश कैसा रहेगा राजकुमारी?
0: आपकी कृपा से वो तो मैं सुनती ही रही हूँ।
1: तब क्या प्रेमालाप?
0: गुसाई जी, आप साधु का वेश धारण किए हैं और इस प्रकार कामी पुरुषों की जैसी चेष्टाएं कर रहे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता।
1: मुझे उपदेश करती है? मेरे नाम और शक्ति से शायद तू परिचित नहीं
0: है। यतिवर, इस प्रकार दुष्टों की जैसी चेष्टाएं करके आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? मुझे तो आपके साधु होने में ही संदेह है, आखिर आप हैं कौन?
1: ले देख मेरा असली रूप। तेरे सामने लंकाधिपति रावण खड़ा है, तेरी अनंत रूप राशि का भिखारी।
0: अरे अरे दुष्ट, तेरा इतना साहस, खड़ा तो रहे, वो देख स्वामी आ गए।
1: कहां है तेरे स्वामी? आ, इस रथ पर बैठ और मेरे साथ चल।
4: तुम कहो किस अपराध से मुझे भुला बैठे? देखो देखो, ये पापी मुझे बलपूर्वक लिए जा रहा है। देखो लक्ष्मण, तुम्हार नहीं दोसा, सो फल उपायो के नेवरोसा। स्वामी की कृपा तो मुझ पर बहुत है, पर वो स्नेह प्रभु सब में दूर है। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन बताए? और गुनायक
5: सीते सीते पुत्री करे से जनित राता, करिहे जात दान करना था। रे रे दुष्ट, थाड़ की न होई, घरे भाई चले थी, न जाने ही मोही।
6: कि मैं नाग की खगपति हुई, मम बल जान सहित पति सोई। ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये अवश्य ही आज मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपने शरीर का परित्याग करेगा।
5: रावण, मेरी बात सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो राम रोष पावक अति घोरा, होई ही सकल सलब कुल तोरा।
6: अरे बूढ़े जटायु, ठहर,
3: शायद तेरा काल ही तुझे यहां खींच लाया है।

0: गृध्रराज जटायु को घायल कर रावण सीता जी को ले चला। विलाप करती हुई सीता जी आकाश मार्ग से जाते हुए पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देखकर राम जी का नाम लेकर वस्त्रालंकार आदि फेंकती चली गई। रावण ने सीता जी को ले जाकर अशोक वन में रखा। इधर लक्ष्मण जी से सीता जी के संबंध में समाचार पाकर श्री राम जी बहुत दुखी हुए। पर्णकुटी को सीता जी से रहित देखकर वे बहुविध विलाप करने लगे।
1: हा गुलफानी जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता, तुम कहाँ हो प्राण वल्लभे, तुम कहाँ हो? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी?
2: तात विषाद का परित्याग कीजिए, आपके समान धीर पुरुष संसार में दूसरा नहीं है।
1: सुनो जानकी तो ही बिन आजू, हर से सकल पाई जन राजू।
2: तात देखिए सारा वन प्रदेश पार कर हम कहां आ पहुंचे।
1: राम राम राम।
2: तात
1: राम।
2: इधर देखिए कोई पंख कटा विशाल पक्षी दम तोड़ रहा है।
1: राम। अरे
3: राम।
1: अरे ये तो गृधराज जटायु है। तात तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी इस दुर्गति का कारण कौन है?
3: नाथ दशा नन ये गति कीनी, तहीं खल जनक सुता हर लीनी।
1: तात जानकी किधर है, किधर गया है दशानन?
3: ले दक्षिण दिशी गयो गोसाई बिलपति अधिक कुररी।

0: उन्हीं के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है तात।
1: दरअसल आके प्रभु राखे प्राण, चलन चहत अब कृपा निधाना।
0: तात, आप अपने देह की रक्षा कीजिए।
1: नाथ, मरते समय जिनका नाम मुख पर आ जाने से पापी भी मुक्त हो जाता है। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ कह खा गए।
0: तात, आपने अपने शुभ कर्मों से ही सदगति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाहु मम धामा, देउ काह तुम पूरन कामा।
1: नाथ, ये सब आपकी कृपा है।
0: मेरी एक प्रार्थना है। सीता हरण तात जनि कहु पिता सन जाई, जौ मैं राम त कुल सहित कह ही दसानन आई।
2: राम के इतना कहते ही गीध देह तजी धरी हरि रूपा, भूखन बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। अबिरल भगति मांगी पर गीध गयो हरि धाम, तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। इसके पश्चात दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए और वन की सघनता देखते हुए आगे चले। मार्ग में उन्होंने कबंध का वध किया, उसे गति देकर श्री राम जी भाई सहित शबरी के आश्रम में पधारे। दोनों भाइयों को देखकर शबरी उनके चरणों से लिपट गई। प्रेम मगन मुख वचन ना आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे।
3: प्रभु, मेरा अहोभाग्य आप इस दीन की कुटिया में पधारे। कंदमूल के सिवा इस दीन के पास और है ही क्या? कृपा कर आप यही ग्रहण कीजिए प्रभु।
0: देवी, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट फल है। इनके माधुरी के सामने षटरस व्यंजन भी व्यर्थ है।
3: प्रभु, कही विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती आभारी। मैं तो बहुत ही पापनी और मंद बुद्धि हूं प्रभु।
0: देव, मेरी बात सुनिए। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन कुन चतुराई। भगति हीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारित देखिया जैसा। और मैं देख रहा हूं कि शास्त्रों में बताई गई जो नौ प्रकार की भक्ति है, वह सब तुम में दृढ़ रूप में विद्यमान है। इसलिए योगियों को भी जो गति दुर्लभ है, वही आज तुम्हें सुलभ हो गई।
3: ये सब आपकी कृपा है प्रभु।
0: देव, अब अगर तुम्हें जानकी का कुछ भी पता हो तो कृपा कर हमें बता दो।
3: पंपा सरही जाऊ रघुराई, तहां होई ही सुग्रीव मिताई। सो सब कहे ही देव रघुबीरा, जानत हो पूछो मत धीरा।
2: इस प्रकार शबरी ने नमस्कार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। श्री राम जी को सारी कथा सुनाकर हृदय में उनके चरण कमलों का ध्यान करके वो योगाग्नि में देह त्याग कर दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई। तदनंतर

अनेक कथा संवाद कहते श्री राम जी और लक्ष्मण जी वन की छटा निरखते पंपासर जा पहुंचे। वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। तभी नारद मुनि ने सीता हरण की घटना से व्यथित सीता जी के वियोग में व्याकुल श्री राम जी के दर्शन किए।

श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहां केवट से गंगा को पार कराने के लिए अनुनय करते हैं। विस्मित नयनों से केवट श्री राम को निहारते हुए विनती करते हैं, प्रभु तुम तो जग के खेवनहार हो, तुम्हें कौन पार लगाए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एक टक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

अवध जब आएंगे, मेरे राम अवध जब आएंगे।

पीछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं, पूछे कौशल